प्यास लगी पानी दी पाल की थी, एक खूह नजर आया। उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओ पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल। पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है। पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंची होए महापुरश सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता। पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू प्याया, कुछ लोकां नू भी प्याया ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी लै। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना, जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना है जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा है कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उसे खूह दे कोल बैठ गए, हाथ विच खड़ताला।

तरनी के औरत नु कांत पति जिस तरह औरत पति नाल प्रीत कर दी है, ऐसे तरह है परमेश्वर मेरे रमैया।

खीर बाला जिवें बच्चा खीर के दुध नू दुध दे नाल प्रीत करदा है चात्रक मुख जैसे जल तरा।

वाला ऐ परमेश्वर हर जगह हर थां जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मन विच भी ऐ परमेश्वर तू है गए ऐ नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार करदा है जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होण।

ए प्रीत दा शब्द पढ़िया नामदेव जी ने अखां बंद ने खू पानी दे नाल नको नक भर गया। संत ज्ञानेश्वर ने क्या नामदेव अखां खोल देख परमेश्वर ने तेरी बेनती सुनी सारा खूह पानी नाल भर गया। नामदेव जी ने अखां खोलियां देखिया कि खूह पानी नाल भरे है। लोग जड़े ने हथा नाल ही पानी कड़ कड़ के पी रहे ने ता संत ज्ञानेश्वर कहन लगे नामदेव सचमुच तू परमेश्वर नू अपने वस विच कर ले है। जिस तरह तू कहना है वो परमेश्वर करदा है। और नामदेव जी सगा चुम उठे ते कहन लगे परमेश्वर सचमुच तेरा नाम बड़ा सोहना है, तू आप भी बड़ा सोहना।

बड़ी मस्ती विच राम राम कर दे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखे आ पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया है। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाए कबीर दे शरीर नूं। ते कहंदे ने भांडे विच जिहड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जिहड़े महापुरश ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नूं ते नाले किया उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे ने।

तीसरे भगत भगत तन्ना जिन्हां बारे भाई गुरुदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करदे ने।

चौकी ते रखे है, रोटी पकाई अते लस्सी रिड़की, लस्सी रोटियां ठाकुर दे अगे रख के ते तन्ना हाथ जोड़ के बैठ गए। ठाकुर नो

तीसरा दिन चढ़िया ते तन्ना कहन लगा हों भी मुंह ना जुटाल सा तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडता दे हथों खाना ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना तू मेरे नाल नर

0: परमेश्वर नू रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तो असी खा ली हुण दस तेनू चाहिदा की है। तू याद कीता मैं आया हुण मंग तेनू की चाहिदा। ता तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दीए। लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला

मैं इस वास्ते तेरी आरती करना क्योंकि सुने है जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज स्वार्थ जड़ा भी इंसान तेरी

चाहिए क्योंकि जिमीदार सी पहली चंगी चाहिए अनाज चंगा चाहिए ताकि इन चीजा वालों मैं निश्चिंत होके

कोड़ी नुखे ए भगवान पैरी सोहनी जुती पाई होवे सोहना सूट पाया होवे घर विच अनाज भी होवे गां ते मज भी होवे ते किधरे आना जाना पै जावे ते पैदल तुर के जांदा फिर आदमी चंगा नहीं लगता कपड़े चंगे पाए होण ते तुरिया जावे पैदल चंगा नहीं लगता आना जाना भी पैंदा है दूर इस करके कृपा कर एक ताजन तुरी चंगेरी एक सोहनी जी घोड़ी भी दे ताकि किधरे आना जाना होवे ता ओ सफर मैं

रस्ते से इच बैठे एक पंडित ने कहा भाव कि जदों ये प्रसाद देन लगी अमरू जी ते उसने पूछ लिया तुहाडा गुरु कौन है। ते अमरू जी ने आख्या भाई मेरा तो गुरु कोई है ही नहीं। ते पंडित ने साफ इनकार कर दिता कहा नहीं तेरे हद का प्रसाद नहीं है, तेरा तो कोई गुरु ही नहीं, तू हले तक गुरु नहीं धारण किया, यह तेरी यात्रा असफल बेकार क्योंकि तेरा गुरु कोई नहीं है। मैं तेरे हद का प्रसाद नहीं लिया, जिन्ना देर तक मैं तेरे संग रहा तेरे नाल रहे ये मेरा टाइम भी व्यर्थ गया क्योंकि मैं निगुरे पुरुष के नाल रहे। साहस जदों मन दे विच ए गल आई ते अमरु जी सोचन लगी कोई गुरु धारण करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए क्योंकि बिन गुरु मुकत ना पाई ए पाई, बिना गुरु तो मुक्ति ही नहीं। ते फिर ये यात्रावां सब असफल होंगी बेकार होंगी क्योंकि गुरु कोई नहीं। गुरबाण सानू बार बार समझा साडा तो गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब जिस दे लड़ कलगीधर पातशाह ने सानू लाया ते गुरु होंदिया ते फिर असी साधना करिए, गुरु होंदिया हजूर विच ना बैठिए ये तो होर भी त्रिल ए अजीब है, ये तो फिर उस तो भी ज्यादा क्योंकि जिन्हों का गुरु है ही नहीं उन्हों की गल कोई नहीं, जिन्हों का गुरु है ते फिर गुरु की हजूरी विच पहुंचन ताही है ना। जे घर बैठिया ही सब कुछ मन दे विच सोच लिया इथों ही मत्था टेक देने कई बंदे कह दें इथों ही मत्था टेक देंदे जी ये गल असी पड़भागे हाँ गुरपुरा जिन सिमरिया सही पे लिहा गुरपुरा पेटियो वड़भागी मने पया प्रगासा। आओ निगरी पुरुष का यह हाल है ते आओ वटपा के असी सारे गुरु वाले हाँ काश ए गुरु कृपा करता रहे साढ़े ते विसरना ही दातार अपना नाम दे नाम की बख्शिश करता रहे सदा सानू अपने संग लाए रखे लड़ लाए रखे।

0: संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा कदो
1: आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा कदो
0: आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर

ओ परमात्मा, ओ हरि मेरे कारे पुत्र बन के जन्म लवे। जिस तरह कोई मूर्ति की पूजा करता है, इस तरह मैं उसनु सामने बिठा के ओदी पूजा करा, ओदी सेवा करा, मैं भी ओदे दर्शन करा, ओदे दर्शन करके

इस सन्यासी पिता मेहता का लू ऐ बालके त्वाड़ा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच ग्रिस्ती होवोगे, फिर त्वाड़े कार ओ नारायण आप प्रगट होवेगा। पर जदू तक स्वास हन भगती करो, सिमरन करो। इस सन्यासी पिता मेहता कालू जी सन्यासी दे रूप विच इना दी जद मौत हुई ता जाग खुल गई। पिता मेहता कालू बड़े हैरान हुए, कहन लगे मैं ते अपने घर बैठा रोटी खांदा खांदा मैं सौं गया, ये कहो जिहा सुपना है? ये ते मेरा घर है, ना कोई नदी है, ना कोई सन्यासी, ना कोई सिख्या दाता, ना कोई दिव मूर्ति। पर हाली मन विच सुपने दा रस है, अखां विच भी सुपने दा रस है, ते अपने आप नाल गल्लां करदे हन ऐ मना कि ये नानक मेरे तप दा फल है कि मैं पिछले जन्म विच सन्यासी सी, जो मैं ए पारी तप कीते उस तप दा फल मेरी अरदास दा फल जो गुरु नानक मेरे घर प्रगट होया। उठ के खड़े हुए अपने आप नु कहंदे ने चल मना तेरे घर नारायण प्रगट होया है, चल के नमस्कार कर। मेहता कालू जी उठे, धन गुरु नानक साहब दे कमरे वल चल पे, ते की देखते धन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे विच दीवा नहीं बलदा पर प्रकाश है, मंजे ते सतगुर लत्तां लमका के बैठे हैं, चेहरे का नूर चलिया नहीं जाता, इंज जापदा है जिवें सारा कमरा आत्मक रूहां वाले महापुरुषां दे नाल भरे है। मंगला चरण दे

पुत्र बन के जन्म लिया पर मैं ही तेनू पहचान ना सकिया कितना चिर सिर धरती ते रख के रोंदे रहे पर जद सिर चुकया पिता मेहता कालू जी हैरान हो गए कमरे अंदर दिया दे रहे ना गुरु नानक साहब ने ना कोई प्रकाश एकदम उठ के कमरे विच बाहर आए और अपनी घरवाली माता तृप्ता नु पुछदे ने तृप्ता नानक किथे ता माता तृप्ता जी कहन लगे वो ते बड़ी देर हो गई बाहर खेडन गए ने

करो और नपुत्र ना समझो। आप नारायण है जब इना वचन होया तां मैं तां कालू जी अपने माता पिता नूं कहिंदे ने।

एकदम उठ के खड़े हो गए और धन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दियां बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नु गल दे नाल लगाया ते नाल ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके ए तां हो सकदा है पर तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ए कदी नहीं हो सकदा। पिता जी तुसी पिता हो, मैं पुत्र हां, मैं तुहानू मत्था टेका, ए ते हो सकदा है तुसी पिता हो के मेरे पैरां ते मत्था टेको ए कदी नहीं हो सकदा। पिता जी पुत्र रब क्यों ना हो जाए।

दुनिया नमस्कारा कर दी है। ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता नु मथा टेकदे ने ते सानू उपदेश देते ने कि पुत्र रब क्यों ना बन जावे पर मापिया तो वड्डा कदी नहीं हो सकता। मापिया विच एक वड्डा गुण है, माता पिता औलाद नु जन्म देते ने, औलाद माता पिता नु जन्म नहीं दे सकती, ये मापिया का वड्डा गुण है। अजकल देखते हैं अजकल दे बच्चे आम माता पिता नु कह देंदे ने जे तुसी जन्म दिता ते की होया ये तुहाडा

जेड़े बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, कोई समझ लैन उन्हां दा दान पुन भी सफल नहीं होता। जेड़े माता पिता की सेवा नहीं करते उन्हां दा कीता होया दान पुन तीर्थ यात्रा पाठ पूजा भी सफल नहीं होती।

अपने घर विच वड्डियां दा आदर मान करना, पर देखदे आं एक मां बाप अठ धीआं पुत्रां नूं पाल सकदा है, पर जद उही माता पिता बुढ़े हो जाण ते ओ जिहड़े अठ धीआं पुत्र ने ओ एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले ते जद बच्चे वड्डे हो जाते ने ओ फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धीआं पुत्रां ते हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण ते फिर नूं पुत्र गुए कहिंदे ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा आके

और माता पिता ये जरूर कहना चाहवांगे कि जब बच्चे छोटे होंगे जिथे उन्होंने चंगा खाना देंगे चंगा कपड़ा देने की कोशिश करते हो चंगी तो चंगी

कई जगह असी गलत हो जाने हैं, क्योंकि जे असी नेक काम नहीं करते बुराइयां करते हैं तो फिर बच्चियां तो असी चंगे काम की किवें उम्मीद कर सकांगे। असी आप भी चंगे होइए और बच्चियां नूं भी चंगी सिख्या देइए ताकि स्वर्ग लभण की लोड़ ना पवे।

थोड़ी नजर करे जय पंडित नगरी सतगुरु पाया जय बुद्ध जन्म परमया सतगुर सतना सतगुरु देवता तक होने सतना लोग सुबह सतगुरु मुझे सच पाया दिल में चौक पाया सच मन पिलाया।

परम सत्कार कुशासन। सतगुरु जी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन शब्द दे विच उस परमात्मा दे नाम दी सिफत करदे हन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगां दा दारू वाहेगुरु दा नाम है। पर ए नाम दा दारू उन्हां नूं मिलदा जिहड़े नाम नाल जुड़दे हन। अरदास करदे हां, हुण अरदास कीती ते हुणे ही मन विच ख्याल आ जांदा जो हुणे कीता हुणे मिल जावे। अरदास कीती ते नाल ही फल दी इच्छा, लेकिन कुछ मन जुड़े, कोई बाणी दा शब्द मन दे अंदर वसे। हुण दवाई दा असर भी ताही होंदा है ना जे दवाई खाई। दवाई लेके आ गए, डॉक्टर को गए, डॉक्टर ने दस दिता तेनू ए बीमारी है, ए दवाई ले, इस नू खा, आराम आ जाएगा। डॉक्टर कोल भी चले गए, अपने आप नू दिखा भी दिता, दवाई भी खरीद ली, घर आ गए, दवाई लिया के बारी विच रख दिती, आप मंजे ते लम्मे पै गए। कोई हाल पुछन आया, की हाल है, ते मंजी ते पिया लम्मा बंदा ए आखे कि कोई फर्क नहीं पिया। डॉक्टर कोल भी गया, डॉक्टर ने दवाई भी दिती पर आराम कोई नहीं आया। हुण पुछे ए दवाई ते खाधी नहीं, आराम कित्थों आवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। गुरु घर ते आए, अरदास भी कीती, करवाई भी, लेकिन उपदेश ते मन विच वसाया ही कोई नहीं, ती असर किवें होवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। बाणी नाल ते मन जोड़िया ही नहीं, ते दुख किवें दूर होवे? दवाई खाधे बगैर आराम नहीं, खावांगे ते आराम आवेगा, ते जे बाणी मन विच वसेगी ते ताही दुखां दा नाश होवेगा। इधर अरदास कीती ते नाल ही सोचिया बस हुण सब कुछ मिल जाए, ये सोच बड़ी माड़ी है। अरदास गुरु सुनदा है, पर घटो घट सानू ये ते चाहिदा है ना कि जिद कोल कुछ लैणा उहदे नाल मन ते जोड़ी, ओदी बाणी ते मन विच वसाईए। आम लोकी ये सोचते ने, तीर्थ यात्रा ते जाओ, एक बारी इशनान कर लो ते सारे पाप खत्म हो जांदे। पर गुरु साहब जी कहंदे ने नहीं, मिले जे तीर्थ नातियां डड्डा जलवासी। जे तीरथ ते नहाण दे नाल ही सारा कुछ मिल जांदा है, फिर मच्छियां डड्डू जिहड़े पानी विच रहिंदे ने इह मुक्त क्यों ना हो गए? सानू तीर्थां ते जाण दा ते पता है, पर जाना किस तरह है इह नहीं पता, नहाणा किस तरह है इह भी नहीं पता। साहिब जी उपदेश करदे हन, काया अंदर अमृत सर साचा,
काया कहते ने शरीर नू। एक अमृतसर इस धरती ते है पंजाब दे विच, एक अमृतसर साडे शरीर दे अंदर है। सर कहते ने सरोवर नू, साहब जी कहते ने काया अंदर अमृतसर साचा मन नावे पाए सुभाई है। नाना किस तरह शरीर पानी विच नावे, मन बाणी विच नावे, मन नावे। जे मन नहीं नाता, भाव मन बाणी नाल नहीं जुड़िया, ते किसे भी तीर्थ ते जाके इशनान कर लो, ओदा कोई लाभ नहीं। गल ते मन दी है, मन नावे पाए सुभाई है। शरीर पानी विच नावे, मन बाणी विच, ते फिर असर होवेगा। तो सतगुरु जी उपदेश करदे ने ओदा नाम दुखां नूं दूर करन वाला है, पर जिस तरह दवाई खाते बगैर आराम नहीं, इस तरह जदों तक नाम मन विच नहीं वसदा उदों तक दुखां दा नाश नहीं हुंदा। ते जिहड़े नाम नाल मन जोड़ लैणगे उहनां दे दुखां दा नाश होवेगा। आओ एक बारी करो सारी रसना पवित्र।

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखां नूं दूर करन वाला नाम है, पर किस तरह? आठ पहर आराधिए, अठे पहर उहदी आराधना करिए, उहदे नाल मन जोड़िए ते दुखां दा नाश होवेगा। डाक्टर भी कह दिंदा है ना, दवाई ते दित्ती है। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ जिस दिन अठवें पातशाह गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने इस संसार ते अवतार लिया। आओ सारे प्यार नाल एक वारी जपो जो तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितनी श्रद्धा भावना दे नाल आप लिखते हैं। श्री हर कृष्ण ध्याइए, जिस डिठे सब दुख जाए। जिन्हां नूं देखण दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है। अठवें बाला प्रीतम गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे, संगतां दे सद्दे ते गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली वल चले। दिल्ली जांदे होए कई जगह ठहरदे, संगतां नूं उपदेश करदे। हरियाणे दे विच पंजोखड़ा नाम दा एक स्थान है, जिथे गुरु हर कृष्ण साहब जी आके ठहरे। बड़ी बड़ी दूरों संगतां आन लगियां। ਇਸੇ ਪੰਜੋਖੜੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪੰਜੋਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।

पंडित लाल चंद ने गुरु साहबान क्या महाराज ए गीता पढ़वाओ। तो सतगुरु जी हस पे, तो हस के कहन लगे लाल चंद बड़ा चतुर निकले, बड़ा सियाना निकले, वादा ते करके गया सी उन्नू लियावांगा जिन्हें गीता कदी पढ़ी नहीं, पर उन्नू लेके आया है जिड़ा बोल ही नहीं सकता, सुन नहीं सकता। इन्नी गल कह के फिर सतगुरु देख दे छजू चीवर वाल हन, ते कहंदे लाल चंद नूं ने चंगा लाल चंद जिन्नू भी लेके आ गया, ये गुरु नानक का घर ऐसा है, इत्थे जिहड़ा जैसी भावना लैके आंदा है उसनु ओहो जिहा फल मिलता है। तेरी इच्छा है इहदे कोल गीता सुननी, ते गुरु नानक तेरी इच्छा पूरी करेगा। गुरु साहिबां दे हाथ विच हमेशा एक छड़ी हुंदी सी खूंडी, ओ खुंडी गुरु साहिबां ने छज्जू चीवर दे सिर ते रखी मेर भरी निगाह दे नाल। छज्जू चीवर वल तकिया ते मुस्कुरा के कहंदे ने छज्जू ओ भाई सिखा, पंडित जी दी इच्छा है कि तू गीता सुनावे। भाई सिखा इन्हां दी इच्छा पूरी कर, पर सुन कल्ली गीता पढ़नी नहीं नाल श्लोकां दे अर्थ भी करके दसने हन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जद गुरु दी मेहर दी नजर होई सिर ते गुरु साहबां ने अपनी छड़ी रखी, ते ओह छज्जू चीवर जिहदे मुंह विचों लारां वगदियां सन, वाल खिलरे, शरीर दी सुध नहीं, रंग ही बदल गया, गुरु दी शोभ मिली, चेहरा ही होर हो गया। जिहदे मुंह विचों लारां वगदियां सन बैठा दरबार विच इधर उधर झाकदा सी जिवें बावरे शदाई बैठे हुंदे ने, हुण रंग ही होर हो गया। हाथ जोड़ के परे दरबार विच खड़ा होया और फिर चरना ते मत्था टेकया और फिर मत्था टेक के फिर खड़ा होया, हाथ जोड़े ते कहन लगा दाता तेरा शुक्र है, तू मैनू नवा जीवन दिता है, शरीर दी सुध दिती, दुनिया दी सुध दिती, दुनिया दी सोझी दिती, ते पातशाह हुण हुकम कर। साहब जी कहन लगे छज्जू गीता पढ़ के सुना, नाले अर्थ करके सुना। ते छज्जू चीवर कहंदा दाता हुण ते तेरी मेहर हो गई है, हुण ते तू हुकम कर, ए गीता ते की सारी कायनात पढ़ के सुना दें। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सारी दुनिया दा हाल दस दें, इतनी तेरी मेहर हो गई। ते छज्जू चीवर पंडित दे सामने बैठा गीता पढ़ता है, नाल श्लोक दे अर्थ कर करके दसदा है। ओ ज्यो ज्यो गीता पढ़ता है ते पंडित लाल चंद कोल बैठा रोई जांदा, ज्यो ज्यो सुनदा है अखां विच अथरू डिगदे हन। ते जद गीता दी ए सारी कथा दा भोग पया ते लाल चंद हुण उठया, भज के चरण पकड़े और चरणा ते सिर रख के ज्यों रोन लगा, कहन लगा महाराज मैनू खिमा कर,
मैं भूल गया तेरा प्रतावा लैण आया असि औगण आ रहे तेरा प्रतावा लैने ते सतगुरु कहंदे ने लाल चंद रो ना उठ ओ लाल चंद तेरे सदका एदे भी भाग जाग पे आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। और अज भी हरियाणे दे विच ए पंजोखरा साहब गुरुद्वारा इस घटना की याद अज भी दवांदा है और जेड़े लोग उते श्रद्धा भावना नाल जांदे हन उन्हां दी मनोकामना अज भी पूरियां होंदियां हन। और फिर गुरु साहब दिल्ली गए, समा समाप्ति दा हो गया है, इतिहास काफी लंबा है पर समा इतना नहीं। दिल्ली जद महामारी फैली हजारां लोग मरण लगे तां उस वक्त गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने अपने चरण धो के चरण पौल दिती और उहदे नाल इह जिहड़ी बीमारी सी दूर होई। और अज भी देखो कदी दिल्ली जाओ जिन्हां हाली दर्शन नहीं कीते गुरुद्वारा बंगला साहब अज भी उत्थे अमृत दे सोमे उसे तरह पे चलदे हन और अज भी जिहड़े श्रद्धा नाल जांदे हन उहनां दे दुख दूर होंदे ने ते जिहड़ियां भी संगतां जाके मत्था टेकदियां ने अपने आप उहनां दे मुंह तों निकलदा श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। आओ शब्द की आखिरी पंक्ति पढ़ के इथे करिए समाप्ति। और हुण समा तो तकरीबन हो ही चुका है, 7:10 तो 8 बजे तक दशमेश दरबार हाजरी भरनी है और कल 7 to 8 इसे स्थान ते फिर आपां सारे गुरु जस करांगे। आओ आखिरी पंक्ति सारी रल के पढ़िए।

साधजना की अचरज कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटाए अभिमान, साध के संग प्रगटाए सुज्ञान। साध के संग बुझाए प्रवनेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी। साध के संग अगोचर मिलाए, साध के संग सदा प्रफुल्ल। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सबकी देन, साध के संग मनोहर बहन। साध के संग न कथू तावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस से होनी बैर, साध के संग न भीगा पैर। साध के संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग तजाय सब आप। आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध के संग न कभू तावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहे, साधु कै संग अजर सहे। साध के संग बसाए थान ऊंचे, साधु कै संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम नितान, नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उतारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु कै संग सोतन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग कर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेट तो होत निहाल। साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे। साध के संग इहा हुआ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मनते बिसरे, साध संग सर पर निस्तर। साध के संग लगे प्रम मीठा, साधु कै संग कट कट ढीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने ते ता बख्याने। साध की उपमा तय गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची।

0: कृपा निधान जल्द पूरो
1: करुणालय है
0: अर्थालय है खल खंडन है मह मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है।
1: हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जल्द पूरो।

एक सपना है। हजूर बाणी विच भी बख्शिश कर दिया न, सुपने छेती चित मूर्ख लाया। ओए मूर्खा, कदी सुपने भी सच्चे होए हन? सोच ए संसार भी सुपना है। जितने तियां पुत्र धन दौलत महल मारियां, जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। इसलिए ए सुपना है। सुपने नाल चित लाउन वाला मनुख कदे तोड़ नहीं अपड़े। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि श्वासा नू सिमरन दी माला बना। श्वास श्वास हर नाम जप, बिरथा श्वास मत खो। क्या जाने ए अंतकाल ए श्वास मत हो। किसे नू की पता है कि जेड़ा श्वास मैं जप रहा सतनाम श्री वाहे गुरु, इस तो अगला श्वास आना है कि नहीं आना, इसका किनू पता है। इसलिए हजूर बख्शिश कर देखन भाई, सास ग्रास बंदगी कर, श्वासा का कोई पता नहीं। एक बुजुर्ग बाबा शरीर छड़न लगा, सारा परिवार आके बेनती करन लगा, बाबा जांदियां जांदियां कोई चंगी सुमति दे जा। ए बुजुर्ग बाबा कहन लगा, मैं अपनी होंद विच अपने जीवन विच तुहानू लखां ही कमा के दिते हन, हुण मेरे श्वास समाप्त हो गए हन, ते कुछ खर्च करके कुछ पैसे दे के ते श्वास लियाओ तो मैं तुहानू सुमति दे सकदा। पर इस सारे परिवार ने नीवियां पा लईयां, आख्या बाबा ये श्वास तो किसी भी कीमत तो मुल नहीं मिलते। फिर ये बुजुर्ग कहन लगा, फिर यही उपदेश है कि इना अमोलक श्वासा दे नाल नाम दे लाला दे वणज करना, तुहाडा संसार ते आउणा भी ते संसार तो जाना भी तनता दे योग हो जाएगा। ऐसा ना होवे ए लाल गुआच जान ते फिर तू लभदा फिरे, ए लभण वाले नहीं हन।